पे चढ़ेगी क्या। 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले बरी, डोंडे आगे कहीं टिकते नहीं, पाते हैं चढ़ी मेरी लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ हर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती अनंत में मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ हर दिल न लगा, क्यों कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मर दिया हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने।

पे चढ़ेगी क्या। 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरे लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

तया न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ हर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुन में आया है तू मरती रहते मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद।

पर चढ़ेगी क्या। 1 2 3 गाड़ी के बोनर से निकले बड़ी टोंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं चलने के लिए कहीं।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनर से निकले बरी, टोंडे आगे कहीं टिकते नहीं, पाते हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं चल निकले कहीं आ

0: नेपालीहरूको महान पर्व बड़ा दशैं शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण आमाबुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सुभाष कर्मचार्य, पूर्व माननीय नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य।
2: यो हो हेलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ज।

0: शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: नगर प्रमुख आइतमान तामाङ तथा उप प्रमुख उमा प्रधान मैलम्ची नगरपालिका परिवार सिन्धुपाल्चोक।

0: मुसुक्क नै त वरा टाक्क ल है मुसुक्क नै गए मुसुक्क नै गले ओ हेलो का आ केरा सिंह ओजे आ आखबे आ पमजा बम नि ब यतो त जम्मन ल अ
1: एकदम ए लाठ लाठ अ क पर्ने ब पर्ने ब पर्यो अ ब पर्यो समात्यो समात्यो समात्यो अ बस अब मजाले हामीले ध्यान नदे है अ दुई जना मात्र अ अ अ माया गर अ माया गर।

0: नेपालीहरूको महान पर्व बड़ा दशैं शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में सम्पूर्ण आमाबुबा दाजुभाई दिदीबहिनी तथा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: भरत पराजुली, प्रतिनिधि सभा सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, सिन्धुपाल्चोक।